नमस्कार। 7 जून के महक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का आवाज की दुनिया के दोस्तों आपको सादर नमस्कार है। घर में अगर बच्चों की जगह हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, सुखदेव जसवाल। नूतन, जिन्होंने वही फिल्में की जिनमें समाज की कुछ भलाई थी, प्रेम था, अंदाज था और शास्त्रीय संगीत था, उन्हीं की फिल्मों के गाने आज पेश करूंगा आपके लिए 2 घंटे के लिए। नंदन नीलेकानी, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन उस पैसे का सही उपयोग किया और गरीब गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर दिए, उनके बारे में बातचीत करूंगा आपके साथ। चार जुलाई को कार्यक्रम हो रहा है गाता रहे मेरा दिल, उसकी 2 टिकटें आज के कार्यक्रम में आपको जीतने का मौका। संत कबीर, जिनके दोहे अत्यंत ही मशहूर हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, उनके जीवन की कुछ बातें हम करेंगे आज के कार्यक्रम में। नूतन जी ने वो फिल्में की जिनका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो समाज से जुड़ी हुई थी और अपनी कलाकारी, अपनी अदाकारी दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार थीं और दिखाई, और वो इतनी मशहूर हुई कि उनकी फिल्में जब रिलीज होने वाली होती थीं तो लोग लाइन लगाते थे बुकिंग काउंटर पर। और हम आज उन्हीं को याद करते हुए उनकी फिल्मों के गाने आपके लिए पेश करेंगे 2 घंटे के लिए।

फिल्म थी राज कपूर और नूतन जी की छलिया, और बहुत ही प्यारे गाने थे इस फिल्म के, और बहुत ही प्यारी अदाकारी थी राज कपूर साहब और नूतन जी की इस फिल्म में। और नूतन जी की बात करें तो उन्होंने उनका जन्म हुआ 4 जून 1936 को एक मराठी परिवार में। कुमार सेन सामर्थ और शोभना सामर्थ के यहाँ। शोभना सामर्थ अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार थी और उनकी बहुत धाक थी उस समय फिल्मी दुनिया में। चार भाई बहनों में से वो सबसे बड़ी थी। दो बहनें थी उनकी, एक भाई। 1952 में उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया और मिस इंडिया चुनी गई, उम्र 16 साल। 14 वर्ष की उम्र थी जब वो शोभना समर्थ, जो उनकी माँ थी और फिल्मों में बहुत मशहूर थी, उनके साथ उन्होंने एक फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था हमारी बेटी। फिल्म शोभना समर्थ ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी, लेकिन पहचान उनकी बनी फिल्म सीमा से, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। और इस फिल्म का गाना भी बहुत ही प्रचलित हुआ और बहुत ही मशहूर हुआ। और ये गाना आपने कुछ बीते सप्ताह में ज़रूर सुना है इस कार्यक्रम पर, लेकिन इसकी एक झलक आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ।

इस फिल्म में 1956 की इस फिल्म में नूतन जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर का 1956 में, और उनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए इसके बाद, उसकी बात भी हम करेंगे आगे। लेकिन अभी समय है उनकी उस गाने की बात करने का जो 1954 की फिल्म थी, और फिल्म का नाम था शबाब, और उसमें उन्होंने एक गाना पर्दे पर निभाया था, जोगन बन जाऊं की सैया तोरे कारण। और ये पेश करते हुए मैं आपको बता दूं कि हमारा फ़ोन नंबर यहाँ स्टूडियो में है 02-9816-2777, 02-9816-2777, और आप अपनी फरमाइश इस नंबर पर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की। और कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं truerr.org.au पे लिसन ऑनलाइन प्ले बटन, या फिर कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने फेवरेट ऐप स्टोर से अपने मोबाइल के साथ आप जहां भी हों सुन सकते हैं महक।

बहुत ही एक प्यारा गाना आपने सुना. नूतन जी की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म थी ये, और इस फिल्म में उन्होंने जो अदाकारी दिखाई थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, और इस गाने को सभी ने बहुत ही पसंद किया था. और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो राज की पसंद का है, और राज ने पसंद किया है ये रातें ये मौसम, बहुत ही प्यारा गाना है. और इसको सुनते हुए 02 9816 2777 हमारा नंबर.

माफ कीजिए, ये वो गाना नहीं है जो मैं आपको सुनाना चाहता था। कोशिश करता हूँ कि ये गाना आपको ज़रूर सुना पाऊँ और आप इस गाने का आनंद ले सकें। तो यूं तो बहुत से गाने हैं एक जैसे बोल होते हैं सबके, लेकिन ये गाना कुछ ऐसा है कि सबने इसको इतना पसंद किया कि अब जैसे ने अपने सुना इसके बोल किसी और गाने में भी हैं, लेकिन अब आपको पेश करता हूँ वो गाना जो आपको सुनाना चाहता था। तो ये है फिल्म दिल्ली का ठग, किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज़ों में।

और फिल्म बारिश आई थी. फिल्म बारिश में नूतन जी थी जाहिर है, क्योंकि आज उनकी फिल्मों के गाने हैं. और उसमें एक गाना बहुत ही प्यारा था और इस फिल्म में था ये गाना, फिर वही चांद वही शाम वही तन्हाई है. और इन बोलों के मिलते जुलते बोल बहुत सी फिल्मों में बहुत से गानों में आए, लेकिन इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया.

आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ताकि वो भी आपका कार्यक्रम आपकी पसंद सुन सकें और कार्यक्रम और भी आगे बढ़ सके। तो अगला गाना जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है नूतन जी की, एक राज कपूर साहब के साथ फिल्म आई थी अनाड़ी। उसके यूं तो सारे गाने एक से एक बढ़कर थे, और ये जो गाना है जिसको पर्दे पर नूतन जी ने पेश किया, ये गाना अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लासिकल भी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना नहीं कि आपको लगे कि ये तो क्लासिकल है। और अगर ये यहाँ मुझे इजाज़त दे कि मैं ये गाना आपको सुना सकूँ, तो

बहुत ही प्यारा गाना और नूतन जी ने इस गाने में बहुत ही अच्छी अपनी अदाकारी भी दिखाई थी और इसीलिए शायद ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था। और अगला गाना भी एक फरमाइशी गाना है और फिल्म है सुजाता और तलत महमूद जी की आवाज़ है। और फिल्म में इस गाने की खास बात ये थी कि ये टेलीफोन पे गाया जाता है। जी हाँ, एक तरफ फिल्म के हीरो हैं और दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन है नूतन जी और सुनील दत्त जी हैं हीरो। और बहुत ही प्यारा गाना था, ये था है बल्कि ये नहीं था, मतलब कहने की बात है। और जिस समय आया था बहुत ही पसंद किया गया था। एस डी बर्मन साहब ने संगीत दिया था, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था और इस फिल्म में नूतन जी तो थी ही, सुनील दत्त जी थे, ललिता पवार जी थी और उस समय की एक टॉप वैम्प हुआ करती थी शशिकला, वो थी इस फिल्म में। और फरीदा जलाल आप समझते हैं, जानते हैं, उनको पहचानते हैं, वो चाइल्ड एक्ट्रेस थी, तो बेबी फरीदा थी इस फिल्म में। तो पेश है आपके लिए ये बेहतरीन गाना, फरमाइशी गाना तलत जी की आवाज़ में।

बहुत ही प्यारा गाना और तलत जी की बहुत ही बेहतरीन आवाज़ और बहुत ही बेहतरीन फिल्म सुजाता, जिसमें नूतन जी ने सुजाता का रोल किया था। और उसके बाद इस फिल्म को जो है, फिल्म सुजाता के इस रोल के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। और फिर आई फिल्म बंदिनी, और फिल्म बंदिनी में नूतन जी ने कल्याणी का रोल किया था, और उस रोल के लिए भी उनको फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था। और उसमें यूं तो दो गाने बहुत ही मशहूर हुए थे, मोरा गोरा अंग लैले और जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, लेकिन ये जो गाना है मेरा गोरा अंग ले ले, इसकी एक फिलोसॉफिकल महत्वता भी है कि क्योंकि वो समझती है कि उसके पिया जो है, जिनका रंग साफ नहीं है, काला है, वो कहती है कि मैं उनके जैसी क्यों नहीं बन सकती, इसलिए मेरा गोरा अंग ले ले।

और अब अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो भी एक फरमाइशी गाना है, रफ़ी साहब की है आवाज़ और ये देवानंद साहब की थी ये फिल्म, और साथ में जाहिर है नूतन जी थी, क्योंकि आज नूतन जी के गानों का है कार्यक्रम और ये भी एक फरमाइशी गाना है, और इसे सुनते हुए आप भी अपनी फरमाइश हमारे पास भेज सकते हैं महक 2RRR 88.5 FM पर, या आप अगर महक के व्हाट्सएप के ग्रुप के सदस्य हैं वहाँ भी भेज सकते हैं, या स्टूडियो में रिंग कर सकते हैं 9816-2777 पे, 9816-2777 पे। तो आइए चलें इस अगले फरमाइशी गाने की ओर।

और अब चलते हैं अगले गाने की ओर, और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है फिल्म पेइंग गेस्ट का, माना जनाब ने पुकारा नहीं। बहुत ही प्यारा गाना और बहुत ही प्यारी फिल्म भी थी, और इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने एक से एक बढ़कर थे।

दिल्ली के मालविया नगर में एक होटल फ्लोरिश बेड एंड ब्रेकफास्ट में 3 जून को भयानक आग लग गई। ये समाचार आया बीबीसी हिंदी को हिंदी में 4 जून को सुबह 8:48 पर आग के समाचार आए और 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में लग गई। जब आग पर काबू पाया गया तो 40 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका था। 39 लोगों को 39 लोगों को बर्न्स ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। अब तक 21 लोगों के मरने के समाचार हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस ने एक्स, जो आप जानते हैं पहले ट्विटर कहलाता था अब एक्स कहलाता है, पर पोस्ट किया कि घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश में यह भी कहा, दिल्ली के मालविया नगर में आग लगने से हुई मौतें दुखद हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और हमारी भी। अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं लगा है। होटल के मालिक लवकेश बजाज और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब होटल को अवैध बताया जा रहा है और मरने वालों में 10 लोग भारतीय हैं, 9 अफ्रीकन हैं और 2 तुर्कमेनिस्तान से हैं। और क्या बताएं, आजकल जो है बातें टेररिज्म की बहुत होती हैं क्योंकि जगह जगह टेररिज्म होता रहता है। तो जनसत्ता समाचार पत्र में 6 जून को समाचार आया कि सिडनी के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी की है। सिडनी के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जारी की है। उसमें पाकिस्तान पहली बार दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन गया है। 1,000 से अधिक आतंकवादी घटनाएं दर्ज हुई हैं एक साल में पाकिस्तान में। बुर्किना फासो एक देश है, वो नंबर 2 पर है। नाइजर नंबर 3 पर है, नाइजीरिया नंबर 4 पर है, इजराइल नंबर 10 पर है और भारत नंबर 13 पर है। और आपकी फरमाइश हमेशा ही नंबर 1 पर है हमारे यहाँ महक 2RRR 88.5 FM पर। जिस तरह की ये अगला गाना जो है वो है एक फरमाइशी गाना और इसकी फरमाइश की है लता ने और ये है फिल्म छबीली का। और आपको बता दूं कि नूतन जी बहुत अच्छी गायिका भी थी लेकिन उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग बहुत ही कम किया, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों में कुछ में ज़रूर प्लेबैक सिंगिंग किया, जैसा कि फिल्म छबीली का ये गाना है।

एक चेतावनी है समाचार के पहले कि अगर आप प्रताड़ना और हत्या आत्महत्या वगैरह की बात नहीं सुनना चाहते तो आप अपने रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कर सकते हैं ताकि आपको ना सुनाई दे, खास तौर से अगर आपके आसपास बच्चे हों। एक बार फिर आवाज़ धीमी कर लीजिए इस रेडियो की ताकि अगर आपको बुरा लगे तो ये आप ना सुन सकें। पिछले सप्ताह बड़े विस्तार से महक पर दहेज के कारण जवान बहुओं की हत्या की बातें की गई थी। इस सप्ताह उस विस्तार में तो नहीं, लेकिन एक समाचार आपके लिए ज़रूर उसी तरह का लेकर आया हूँ जो करंट केस की बात है। और 12 मई को ट्विशा शर्मा नाम की जवान बहू का शव भोपाल में उसके ससुराल में फंदे से लटका मिला। उसकी शादी को केवल 5 महीने हुए थे। उसके माता पिता ने उसके पति और सास पर प्रताड़ना और दहेज मांगने का आरोप लगाया है। ट्विशा शर्मा की हत्या के आरोप भी लगाए हैं। पति समर्थ शर्मा वकील है जिसे कानून की अच्छी जानकारी है, अच्छा ज्ञान है, ज़रूर होगा, आखिर वो वकील है। सास गिरीबाला शर्मा एक रिटायर्ड जज है जिसके तो खून में कानून होना चाहिए। ऐसे लोग ही अगर ये आरोप सच हैं, कानून के दहेज गैर कानूनी है आप जानते ही हैं और भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है, उसको अनदेखा करेंगे वकील और जज तो अनपढ़ समाज से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। 1951 संविधान लागू हुआ जिसने दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये भयानक राक्षस आज भी जिंदा है और यही नहीं समाज के ताकतवर ताकतों द्वारा पाला और पोसा जा रहा है। एक बार फिर क्यों नहीं भारतीय समाज संविधान और कानून की इज्जत करना जानता है। क्यों ऐसा है कि भारतीय समाज कानून और संविधान की इज्जत नहीं करता? और अब गिरीबाला ने दावा किया है कि उसे उन कैदियों से बचाया जाए जो उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, क्योंकि जिस जेल में उन्हें रखा गया है उसी जेल में वो लोग हैं जिन्हें उन्होंने जज होते हुए सजा सुनाई है और वो इस जेल में हैं। इसलिए उसे और उसके बेटे को जान के खतरे के कारण सुरक्षित जगह में रखा जाए। ये सब ठीक है और होना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बहू की सुरक्षा की बात क्यों नहीं की और अपनी बहू की सुरक्षा को मद्देनजर क्यों नहीं रखा? यही है सवाल। लेकिन हम आपके लिए गीत लेकर आते हैं, सवाल नहीं। और अगला गाना भी नूतन जी की आवाज़ में है और नूतन जी ने ये गाना एक बार फिर इसी फिल्म छबीली के लिए गाया था और इस बार उनका साथ दिया था हेमंत कुमार जी ने और ये गाना अत्यंत ही प्रचलित हुआ था। जैसा मैंने कहा, वो बहुत अच्छी गायिका रही हैं और आप इस गाने में सुनेंगे तो आप उस प्रशंसा करेंगे कि इतनी अच्छी गायिका थी, लेकिन उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग नहीं किया। तो पेश है आपके लिए छबीली।

0: Roll Up Monday Nights for Pop Rock with Robbie, playing all the best sounds from the 50s, 60s and 70s. Plus, dedication songs, one-hit wonders and much more. It's fab. It's gear. It's pop rock.
1: Sande Shugabad, aapka bahut bahut swagat hai. Mehak, 2RRR, 88.5 FM par aaj. Nutan ji ki filmon ke gaanon ke is कार्यक्रम में अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं नूतन जी की फिल्मों के गानों से और बात करते हैं नंदन नीलेकानी जी की. नंदन नीलेकानी जी जिनका जन्म हुआ 2 जून 1955 को और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश्ड करियर बना चुके हैं. भारत में आधार कार्ड लाने वाले हैं. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो प्रमुख भी रहे हैं. प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके राज में. और आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की. 1978 में पत्नी कंप्यूटर्स में काम किया एन नारायण मूर्ति के साथ. इन्फोसिस में काम किया. 2002 में सीईओ नियुक्त हुए इन्फोसिस के. 2007 में को चेयरमैन बने. 2002 से 2012 के बीच इन्फोसिस ने 6 गुना तरक्की की और $3 बिलियन कंपनी बनी उनकी उनके अंडर. 2009 में UIA ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त हुए जो एक कैबिनेट रैंक था. ये पद उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आमंत्रण पर स्वीकार किया. UIDAI के आधार कार्ड का मकसद हर भारतीय को यूनिक पहचान वाला कार्ड देना था. अब तो लागू हो गया है. इस कार्ड के द्वारा सरकारी सेवाएं सीधी कार्ड होल्डर तक पहुंचेंगी ऐसा माना गया था और ऐसा ही हो रहा है. कार्ड में बायोमेट्रिक आईडी है सो धोखे की उम्मीद बहुत कम है. ये संसार का सबसे बड़ा सामाजिक प्रोजेक्ट है, सोशल प्रोजेक्ट है. इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वो सदस्य रहे. NCAER इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडेशन और बॉम्बे हेरिटेज फंड के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य. गूगल प्ले स्टोर के द्वारा उन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाने, आईटी की शिक्षा देने, कंप्यूटर की शिक्षा देने सिखाने के लिए एक ऐसा स्टेप चालू किया $10 मिलियन की लागत से. और ये $10 मिलियन उन्होंने अपने लगाए, किसी से नहीं लिए. और इस को नाम दिया गया होल इन द वॉल. और ये होल इन द वॉल इसलिए है कि वो गांव-गांव में किसी भी दीवार में छेद करते थे, उसमें कंप्यूटर लगाते थे. और टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर थे उस समय के लिए, बहुत एडवांस थे. तो बच्चे आकर उससे खेलते थे और सीखते थे कंप्यूटर कैसे चलाएं. उनको ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ रोटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को से मिला 31 मई 2011 को. NDTV इंडियन ऑफ द ईयर ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2011, जोसेफ शुम्पटर प्राइज 2005, टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट 2009, लेजेंड इन लीडरशिप येल यूनिवर्सिटी नवंबर 2009, पहले भारतीय बने, पद्म भूषण 2006, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर फोर्ब्स एशिया 2006. और एनडीए सरकार ने क्या किया, आते ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया. लेकिन कहते हैं ना, यू कांट कीप अ गुड मैन अवे फॉर लॉन्ग. फिर वापस बुलाया गया उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर आधार कार्ड को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए. यह कुछ बातें नंदन नीलेकानी जी के बारे में और उम्मीद है इससे आपको उनके योगदान के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी. और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो नूतन जी और सुनील दत्त जी की एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म थी मिलन. और यूं तो उसके सारे गाने अच्छे थे लेकिन ये गाना कुछ खास ही था क्योंकि इसमें वो बात थी. क्या सावन का महीना पवन करे शोर, और नूतन बार बार कहती है सावन का महीना पवन करे शोर, और सुनील दत्त उसे बार बार सही करने की कोशिश करता है।

फिल्म मिलन में उन्होंने रोल किया था राधा का और इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया 1967 का।

दैनिक ट्रिब्यून में 1 जून को समाचार आया, शिक्षा संबंधी सवाल पूछा अमृतसर की छात्रा ने सितारे जमीन पर कार्यक्रम के दौरान। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद थे और छात्रा ने उनसे ही सीधा सवाल पूछ लिया, जब 3 विद्यार्थी एक जैसे नंबर पाते हैं तो उम्र के आधार पर उन्हें 1, 2, और 3 जगह क्यों दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बात सुनी, गौर किया और तुरंत ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दे दी कि तीनों एक जैसे नंबर पाने वाले विद्यार्थियों को 1 स्थान ही दिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वेल डन दोनों की तरफ से, स्टूडेंट और चीफ मिनिस्टर की तरफ से। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार को और कंपनी डुसॉल्ट को, फ्रांस की कंपनी डुसॉल्ट को रफेल के 114 रफेल फाइटर जेट्स का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया है। इसमें 22 फाइटर प्लेन तैयार इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। 92 फाइटर प्लेन्स भारत में बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अधीन। कुल कीमत होगी 3.25 लाख करोड़ रुपए। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 1 जून से फ्रांस के 3 दिनों के दौरे पर हैं। और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो है अनाड़ी फिल्म का और ये है एक फरमाइशी गाना, और इस गाने की फरमाइश की है शकुंतला ने, और इसे सुनते हुए आप भी हमें फोन कर सकते हैं 02981622।

0: 3:24 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में. अब पेश हैं कुछ संदेश.
1: A message from station sponsor North Ride RSL to members and guests. The club's courtesy bus services areas of Marsfield, Macquarie Park, North Ride, and now extends to Gladesville, with pick-up and drop-off every Friday and Saturday between 5 and 10pm. To inquire about the service areas or to book a ride, contact the North Ride RSL's reception desk on 9888 7588. North Ride RSL, where community is our focus.
2: Bring along your knitting needles, crochet hooks and sewing needles to Ride Library Friday, August 7, 10am to 2pm for the annual knit-in while supporting the not-for-profit organisation Wrap With Love. Donations of 8-ply yarn, wool or acrylic, completed squares and wraps are also welcome. For more information regarding specifications for completed squares and wraps, visit the Wrap With Love website, wrapwithlove.org/patterns. A selection of wraps will also be on display from Monday, July 21 to Sunday, August 10 at Ride Library.
3: Hi, my name's Natalie, and I hope you'll join me here at 2RRR every Saturday when I present the Time Slides program. Listen in for interviews with local bands and maybe even hear them play live in the studio. We'll play lots of independent and alternative local and international bands as well. Plus, we'll also get our arts fix with chats and interviews with curators, artists and authors. Join me on Saturdays, 4pm till 6pm for music and arts on the Time Slides program with me, Natalie, on 2RRR 88.5 FM.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर. आज नूतन जी की फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चलते हैं संत कबीर जी की ओर, जिनका जन्म हुआ 2 जून 1440 को. कुछ लोग कहते हैं 1518 को, लेकिन जो भी है उनका नाम उतना ही है जन्म जब भी हुआ हो. एक ब्राह्मण विधवा के वो बेटे थे जिसने बदनामी के डर से बचने के लिए उन्हें त्याग दिया. गरीब मुस्लिम परिवार नीरू और नीमू ने उन्हें पाला. कपड़े बुनाई का काम करते थे वो दोनों. कबीर जी को भी बचपन से ही बुनाई का काम सिखाया. गरीबी की वजह से उन्हें ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सके, लेकिन एक वैष्णव संत स्वामी रामानंद ने कबीर जी को अपना शिष्य बनाया. तब वो 13 साल के थे जब स्वामी रामानंद जी की मृत्यु हो गई. कबीर जी ने अपनी बातें दोहों में कही और उनके दोहे इतने ज्ञान वाले हैं कि उनके 237 दोहे सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं. भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1952 में एक पोस्टेज स्टैम्प निकाली थी. उनकी कृतियां हैं बीजक, ग्रंथावली, शब्दावली, अनुराग सागर. उनके दोहे साधारण से साधारण व्यक्ति की समझ में भी आ जाते हैं, जैसे कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह. माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार वो होता है जो माटी से बर्तन बनाता है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए. माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार थे मन का फेर. दुख में सुमरन सब करें सुख में करे न कोए, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए. बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी पंथी माफ़ कीजिए पंछी नहीं पंथी

जो राह चलता है उसे पंथी कहते हैं। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यदि कुछ बातें कबीर जी के बारे में, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और आइए चलें अगले गाने की ओर। और अगला गाना जो है वो है फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। नूतन जी और आशा पारेख थी इस फिल्म में, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। और इसमें देवानंद साहब के जो एक भाई थे विजयानंद, वो भी थे। और बहुत अच्छी फिल्म थी ये, बहुत ही एक अलग तरह की फिल्म थी कि एक सौतन और एक पत्नी किस तरह से आपस में रिश्ता निभाती हैं। और इस गाने को सुनते हुए 02981622777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में। और इस फिल्म के लिए भी नूतन जी को 1978 का बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था संयुक्ता चौहान के रोल के लिए।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना ये, मैं तुलसी तेरे आंगन की, जैसे मैंने कहा इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड था 1978 का, और इसके बाद उन्हें 1978 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया और फिल्म थी मेरी जंग। तो बहुत ही अवार्ड जीते हैं इन्होंने। और ये जो अगला गाना है ये भी एक फरमाइशी गाना है, लेकिन इसको सुनाने से पहले आपको बता दूं कि भारत में जो आईपीएल होता है, आईपीएल 2026, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार जीता है और गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया है। और गुजरात टाइटंस ने 155 रन बनाए थे 8 विकेट खोके, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 161 रन बनाए 5 विकेट खोकर और 5 विकेट से ये मैच जीत लिया 18 ओवर्स में। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ट्रॉफी और 20 करोड़ रुपए जीता और गुजरात टाइटन्स 12.5 करोड़ रुपए जीता, और फेयर प्ले के लिए पंजाब किंग्स को 10 लाख रुपए मिले और वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए मिले 150s बनाने के लिए और 776 रन बनाने के लिए, और कगिसो रबारा साउथ अफ्रीकन प्लेयर 10 लाख रुपए जीते हैं 29 विकेट लेने के लिए। और फिल्मी दुनिया की समाचारों में सलमान खान की आने वाली फिल्म है SVC 63, जो एक्शन स्टंट्स और फाइट से भरपूर होगी ऐसा माना जाता है। साथ ही सलमान खान के मशहूर काला हिरन शिकार के सागा पर भी एक फिल्म बनने जा रही है और फिल्म का नाम है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी। ये एक कोर्टरूम ड्रामा और बिश्नोई गैंग की दुश्मनी जो सलमान खान के खिलाफ वो दिखा रहे हैं उसका भी इसमें चर्चा है। लेकिन अब सलमान खान ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को नोटिस भेज दिया है, शायद फिल्म प्रोडक्शन पर रोक ही लग जाए। और रैप आर्टिस्ट बादशाह जो है वो चंडीगढ़ के नाइट क्लब सागो बाई बादशाह चलाते हैं और चंडीगढ़ प्रशासन ने उसे सील कर दिया है। कथित तौर पर प्रशासन के बताए बदलाव कई बार याद दिलाने के बावजूद पूरे नहीं किए गए। बड़ी फिल्मों को बनाने में कम फीस साथ में मुनाफे में भी हिस्सा, ऐसा ही हुआ फिल्म धुरंधर में। रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य गधर ने कम फीस ली लेकिन मुनाफे में हिस्सा चुना और मुनाफे में रहे। 2 बार तलाकशुदा अभिनेता आमिर खान कथित तौर पर 5 जुलाई को तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं वधु की गौरी स्प्रैट। और रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ी, आपको मैंने समाचार दिया था यही महक 2RRR पे। प्रोड्यूसर्स ने शिकायत दर्ज की थी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज में, जिन्होंने मेंबर्स को रणवीर सिंह के साथ काम करने के लिए नोटिस दे दिया कि वो उसके साथ काम ना करें। अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस ऐसे केसेस के बारे में कहा है, इससे केवल प्रोड्यूसर्स ही नहीं फिल्म पर सभी काम करने वाले कर्मचारियों को नुकसान होता है, इसलिए ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए। और अगला गाना भी एक फरमाइशी गाना है, फरमाइश की है लता ने, फिल्म है सरस्वती चंद्र।

और अब समय है पहली का पहली या रैफल कहिए हम दो टिकट रैफल कर रहे हैं और ये दो टिकट हैं गाता रहे मेरा दिल कार्यक्रम के और गाता रहे मेरा दिल कार्यक्रम जो है 4 जुलाई को रीजेंसी सेंटर ओबन में हो रहा है शाम के 6:30 बजे और इसके बारे में जानकारी आप पा सकते हैं 0524019956 पे लेकिन आज कार्यक्रम में आप दो टिकट जीत सकते हैं दो अलग अलग लोग इस सवाल का जवाब दे के कि जैसा मैंने बताया 4 जुलाई को रीजेंसी सेंटर ओबन में हो रहा है ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे तो आपको बताना है कि गाता रहे मेरा दिल जो गाना था उसमें एक्टर्स कौन कौन थे पर्दे पर इस गाने को किसने गाया था गाता रहे मेरा दिल को हमारा नंबर है 9816277 9816277 और दो लोगों को मौका मिलेगा एक एक टिकट जीतने का इस कार्यक्रम का बातें हमारी कर्म भूमि की बाद में बगरेंगे पहले करते हैं बातें हमारी जन्मभूमि की कुछ इधर की कुछ उधर की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एनुअल अमूल जो कि बटर बनाने वाली कंपनी थी अब बहुत कुछ बनाती है अमूल ने 600 करोड़ रुपए से डेयरी प्लांट लगाया है और लगाना शुरू कर दिया है रोज 15 लाख टन दूध प्रोसेस होगा 10 लाख टन दही बनेगा और बंगाल की मशहूर मिठाई मिष्टी दोई भी बनेगी लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट और इन्वेंटर सोनम वांगचुक ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की है और कॉकरोच पार्टी शामिल होने की घोषणा की है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्कार योजना के अधीन पंजाब की 52 लाख महिलाओं को 1000 रुपये महीना और दलित महिलाओं को 1500 रुपये महीना सहायता देने की घोषणा की है गर्मियों में बर्फ के रंगदार शरबत के गोले यानी चुस्की का ठंडा मजा मशहूर है चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के शराब के ठेके के बाहर भी बर्फ के गोले की चुस्की बिक रही थी लेकिन फर्क यह था कि शरबत की जगह उसमें वोडका डाली जा रही थी और वोडका डालने का पता चलने के बाद फिर क्या था एक्साइज वालों ने मारा छापा 7 लाख रुपए का जुर्माना किया और बार वाले का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया अगर वो बार के अंदर ये करता तो उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता यूएसए से इस वर्ष अब तक 1076 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है ट्रंप सरकार द्वारा और ट्रंप सरकार के आने के बाद अब तक 3567 लोग डिपोर्ट हो चुके हैं तो दो लोग जीत सकते हैं एक एक टिकट जो 4 जुलाई को कार्यक्रम हो रहा है ओबन में और रीजेंसी सेंटर में और आपको बताना है कि गाता रहे मेरा दिल जो था उसमें हीरो और हीरोइन कौन थे बहुत ही आसान है आप बता सकते हैं और दो लोगों को मौका है जीतने का एक एक टिकट महक 2RRR 88.5 FM पर और अगला गाना फिल्म है दिल ही तो है और नूतन जी और राज कपूर जी

बातें हमारी कर्म भूमि की। स्टर्लिंग नासा, ये 21 वर्ष का स्टूडेंट है। स्टर्लिंग नासा उसका सही नाम है, नासा जैसे नासा स्पेस सेंटर है। स्टर्लिंग नासा 21 वर्ष का स्टूडेंट शनिवार 30 मई को डार्लिंग हार्बर ग्रेट हॉल सिडनी में कॉन्सर्ट देखने गया और अनाउंसमेंट हुआ कि इंटरवल के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि एक म्यूजिशियन की तबीयत बिगड़ गई है और वो इसमें भाग कार्यक्रम में नहीं ले सकता। जो बैंड है उसमें उसका हिस्सा है, उसका काम ज़रूरी है और वो हिस्सा नहीं ले सकता। अगर कोई म्यूजिशियन हो ऑडियंस में और कीबोर्ड बजाने वाला हो और जो इशारे भी समझता हो, यानी आप जानते हैं ना जो कंडक्टर होता है वो इशारे करता है, तो अगर इशारे भी समझता हो तो उनसे संपर्क करे। स्टर्लिंग नासा ने संपर्क किया और वो कॉन्सर्ट का हिस्सा बन गया। ऐसा भी होता है, देखने आए थे और कॉन्सर्ट में हिस्सा बन गए। ओकस आप जानते हैं, AUKUS, ओकस में नया मोड आया है। US अब तक ऑस्ट्रेलिया को नई नहीं सेकेंड हैंड सबमरीन्स बेचेगा। 33 सालों तक चलने वाली सबमरीन्स 10 साल पुरानी होंगी। अब क्या होगा कौन जाने। 1924 से 1980 तक ऑस्ट्रेलिया में एक महिला आम तौर से 2 से 4 बच्चों की माँ बनती थी। 1980 से लेकर अब तक ये गिनती गिरती ही जा रही है। धीरे धीरे ये 1.4 पे पहुँच गई है, यानी 4 की बजाय अब 1.4 बच्चे की मां बनती है महिला। जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए यह संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, यानी जनसंख्या खतरे में है, यह चिंता की बात है। वन नेशन पार्टी लगातार कोअलिशन और लेबर से वोट छीनकर आगे बढ़ रही है। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के कॉलमनिस्ट पीटर हार्चर का कहना है कि अन्य कारणों के अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग से हताश और निराश वन नेशन पार्टी की ओर लोग जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि दोनों लिबरल नेशनल पार्टी और लेबर पार्टी नाकाम हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को काबू करने में, लेकिन हम बिल्कुल आपकी फरमाइश को काबू कर सकते हैं, जैसे कि ये अगला गाना। और ये है फिल्म तेरे घर के सामने, ये एक फरमाइशी गाना है जिसकी फरमाइश की है सुधा ने। इसे सुनते हुए आप भी हमारी रैफल का जवाब दे सकते हैं कि गाता रहे मेरे दिल में पर्दे पर किन हीरो और हीरोइन ने निभाया है। आप जाएंगे ड्रॉ में और 2 लोगों को मिलेगा एक एक टिकट इस कॉन्सर्ट का, और गाता रहे मेरा दिल का जो 4 जुलाई को हो रहा है ओबन में रीजेंसी सेंटर में शाम 6:30 बजे। माफ कीजिए थोड़ी सी गड़बड़, और उम्मीद करता हूँ कि यह गड़बड़ बिल्कुल हट जाएगी और आपके लिए यह गाना पूरी तरह से पेश कर सकूंगा। तो पेश है आपके लिए, उम्मीद है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरफेरेंस के, ये बेहतरीन गाना महक 2RRR 88.5 FM पर।

अगले सप्ताह राजकुमार राव, दिशा पठानी, डिंपल कपाड़िया, शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, पद्मिनी और मीका सिंह जो गायक हैं उनके हैं जन्मदिन, और राजेंद्र नाथ जो कॉमेडियन रहे हैं, और ख्वाजा अहमद अब्बास जिन्होंने साथ हिंदुस्तानी बनाई उनके हैं जन्मदिन, और मशहूर लोगों में सुंदर पिचाई जो कि आप जानते ही हैं किस चीज़ के वो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हैं, किरण बेदी, प्रकाश पादुकोण जो बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं जिनकी बेटी आप जानते हैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, महेश भूपति, राम प्रसाद बिस्मिल और धन सिंह थापा परमवीर चक्र विजेता। और अगले सप्ताह मैं पर्सनली कार्यक्रम नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए खेद है, और आपके लिए एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम मैं छोड़े जाऊंगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अंतिम गाना भी एक फरमाइशी गाना है, और आपका कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। और अंतिम गाना जो आपके लिए, फरमाइशी गाना आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, वो फरमाइश है जसप्रीत की, और बहुत ही प्यारा गाना है, ये फिल्म है पेइंग गेस्ट। इसे सुनते हुए मुझे सुखदेव जसवाल को दो हफ्ते के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।